अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: Energy. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर फ्राइडे बॉलीवुड हमें बताता है कि उसने इस हफ्ते क्या बनाया, लेकिन हर मंडे ऑडियंस बॉलीवुड को बता देती है कि उसने क्या रिजेक्ट किया। और शायद इसलिए हिंदी सिनेमा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है। आज सिर्फ बड़े स्टार्स काफी नहीं है, सिर्फ बड़े बजट्स काफी नहीं है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया भी काफी नहीं है। अच्छी फिल्म हो तो लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं, मैं वापस आऊंगा। बुरा रीमेक हो तो लोग उसे छोड़ भी देते हैं। और जो चीज कभी सिर्फ पोस्टर्स और प्रमोशंस डिसाइड करते थे, आज वो प्लेलिस्ट, रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ डिसाइड करते हैं। यानी बॉलीवुड बदल रहा है, लेकिन उसे बदल कोई और नहीं रहा, आप बदल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ड्रॉप ऑफ द मिर्ची टॉप 20। मैं हूं आपका ट्रैवल बडी ऑन दिस राइड सुरेन सुंदरम। एंड वो मंजर आ गया है जहां एक गाने को 13 महीनों बाद शायद हम अलविदा कहने जा रहे हैं। हर जेनरेशन अपनी मोहब्बत को एक गाने में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। शायद इस जेनरेशन के लिए वो है सैयारा। Not just another hit song, ये वो गाना था जिसमें लाखों लोगों ने अपना प्यार, अपना इंतजार और अपना टूटना छुपा दिया। वक्त बदलेगा, महीने बदलेंगे, और सालों बाद कहीं दिल के किसी कोने में एक सैयारा छुपा होगा। नंबर 20।

कभी कभी बॉक्स ऑफिस एक बहुत खूबसूरत बात सिखा देता है। मैं वापस आऊंगा उसका जीता जागता सबूत है। फिल्म ने शोर मचाकर नहीं, लोगों का दिल जीत कर अपनी जगह बनाई। और शायद हिंदी सिनेमा भी धीरे धीरे कुछ और सीख रहा है। बहुत सालों तक बॉलीवुड ने हमें एक ही तरह की हीरोइन दिखाई, एक तरह का चेहरा, एक तरह की बॉडी, जिसे प्यार सिर्फ कुछ लोगों को ही सूट करता हो ऑन द स्क्रीन। फिर आई अंजलि आनंद, टीवी की सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मर्स में से एक, और फिर उन्हें मिली एक फिल्म।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डायरेक्टेड बाय करण जौहर हिमसेल्फ। अब उसमें अंजलि का रोल छोटा था, लेकिन वो रोल बन गया बेहद यादगार। एंड अब धमाल 4 में वो सिर्फ फ्रेम का हिस्सा नहीं है, वो लव स्टोरी का हिस्सा है। और मुझे लगता है ये कास्टिंग सिर्फ एक कास्टिंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि हीरोइन होने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं, परफेक्ट ऑनेस्टी चाहिए होती है। और अंजलि में वो ऑनेस्टी साफ नजर आती है। सच कहूं, अगर हिंदी सिनेमा वाकई बदल रहा है तो उसकी पहचान उन चेहरों से होगी जिन्हें देखकर ज्यादा लोग कहेंगे ये तो हम जैसे लगते हैं, ये तो हम ही हैं। नंबर 18 पर इस हफ्ते एक नई एंट्री हो रही है, मराठी सेंसेशन संजू राठौड़ की आवाज में रितेश देशमुख और अंजलि आनंद पर पिक्चराइज। दिस वन इज अ रोमांटिक सॉन्ग एंड इस गाने का नाम है साड़ी, फ्रॉम धमाल 4। नंबर 18।

ब्याह करवा दो जी, इस हफ्ते नंबर 17 पर है, लेकिन मेरी नजर गाने पर नहीं, हमेशा उसके टाइटल पर ही जाती है। है जवानी तो इश्क होना है, और मुझे सच में लगता है कि बॉलीवुड को फिर से लंबे टाइटल्स याद आने लगे हैं। देखो, हम 90s वाले लोग एक अजीब सी लग्जरी के साथ बड़े हुए थे। उस जमाने में फिल्म के टाइटल सिर्फ नाम नहीं होते थे, पूरे के पूरे इमोशंस होते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमारा दिल आपके पास है, कभी खुशी कभी गम, एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट टू ऑफ माय फेवरेट्स, बोथ ऑफ देम वर सलमान खान फिल्म्स। नंबर 1 पर

0: और ऐसा लगता था जैसे पोस्टर देखने से पहले ही फिल्म आपसे बात कर रही हो। फिर सिंप्लिसिटी ट्रेंड बन गई। अल्फा, एनिमल, सिकंदर, धुरंधर, एक शब्द, एक पंच। सर्च करने में वैसे आसान भी होता है, लेकिन याद रहने के लिए सिर्फ छोटा होना काफी नहीं होता। शायद इसलिए 25-30 साल बाद भी हम उन पुराने टाइटल्स को आज भी पूरा बोलते हैं, एक भी लफ्ज नहीं छोड़ते, क्योंकि वो टाइटल्स नहीं थे, वो बॉलीवुड की वोकैबुलरी बन गए थे। नंबर 16 पर इस हफ्ते वी गॉट द टू वर्ड्स कॉल्ड भूत बंगला, जिसका गाना तू ही दिसदा इज ट्रैकिंग वेल विद द ऑडियंस। लेकिन लंबी टाइटल वाली फिल्मों को याद करते हुए, हियर इज अ मॉडर्न डे फिल्म विद अ लॉन्गेस्ट टाइटल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसका शायद सबसे पॉपुलर एंड येट सबसे खूबसूरत गाना मोहित चौहान इन सुपर फॉर्म, ये है पीलू। प्रीतम दा का म्यूजिक, इरशाद भाई का लिखा, बनाते इसको इस हफ्ते का रिवाइंड।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 15. Oh, look at

फॉर मी ये कॉकटेल का सबसे हल्का गाना है एंड मे बी दैट्स व्हाई वल्ला इस हफ्ते भी नंबर 15 पर है। और कॉकटेल 2 को देखकर एक बात काफी अच्छे से समझ आ जाती है, हिट गाना बनाना मुश्किल है लेकिन उससे भी मुश्किल है एक्साइटमेंट को जिंदा रखना। आजकल बॉलीवुड में फिल्म अनाउंस करना बहुत आसान हो गया है, मोशन पोस्टर, टाइटल रिवील, टीजर, सोशल मीडिया ट्रेंड, और फिर होता है इंतजार, अ लॉन्ग वेट। नाउ यश की टॉक्सिक को ही देख लो, पहले एक रिलीज डेट आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अब फाइनली 26 अगस्त 2026 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। एंड देन यू गॉट सलमान खान की मातृभूमि। दो गाने आ गए थे वैसे मिर्ची टॉप 20 पर, फिल्म की बातें भी शुरू हो गई थी, लेकिन आज अगर आप सलमान खान को गूगल करोगे तो ज्यादा डिस्कशन उनकी अगली फिल्म का हो रहा होता है, वेयर ही इज वर्किंग विद अ साउथ इंडियन डायरेक्टर कॉल्ड वामशी पेडिपल्ली। अजीब है ना, कभी कभी लगता है बॉलीवुड फिल्म बनाना नहीं एक्सपेक्टेशन मैनेज करना हार गया है, क्योंकि हाइप की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप वक्त पर रिलीज नहीं कर पाए, ऑडियंस रुकती नहीं, वो अगला ट्रेलर देख लेती है, अगला गाना सुन लेती है, अगली फिल्म का इंतजार करने लगती है। लेकिन नंबर 14 पर एक टिपिकल समर कॉमेडी बॉलीवुड फिल्म धमाल 4 का ये भोजपुरी फ्लेवर वाला फुल ऑन देसी गाना चटनी। नंबर

0: ब्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची इट्स हॉट। Only on Mirchi. It's hot.
2: Number 13.

12. कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

ये जो सुना ना अभी, ये इस हफ्ते की नई एंट्री है, नंबर 12 पर, इस कमीना 2.0। अबे क्या है ये? देखो जो मैं कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि जब म्यूजिक अच्छा लगता है ना, मैं दिल से उसकी तारीफ करता हूँ, और जब म्यूजिक बकवास होता है तो उसे भी उतनी ही ऑनेस्टी से कॉल आउट करता हूँ। यार एक क्लासिक गाने को रीमेक करना गुनाह नहीं है, लेकिन उसे बिना फील के, वाइब के, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिना सब्सटेंस के रीमेक करना जरूर गुनाह है। ओरिजिनल इश्क अमीना सिर्फ एक हिट गाना नहीं था, उसमें शरारत थी, आइटम सॉन्ग होने के बावजूद एक अदा थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो बात ही नहीं है। देखो धुरंधर ने हमें सिखा दिया है कि अगर रीमेक्स बनानी ही है तो वो कैसे बनानी है।

पुरंदर ने सिर्फ गाने उठाए नहीं, उसकी स्पिरिट को समझा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक चीज जो है वो सही की इन लोगों ने, सोनू निगम और अलका याग्निक की असली आवाज को बरकरार रखा, बाकी सब इतना ऑर्डिनरी है भाई। और अफसोस इसलिए भी है क्योंकि बेबी डो डाई डो का ट्रेलर जेन्युइनली मुझे एक्साइटिंग लगा था। एक डेफ और म्यूट असैसिन, क्या कमाल का प्रमाइस है। लेकिन कभी कभी एक गाना फिल्म की एक्साइटमेंट को बना भी देता है और उसे बिगाड़ भी देता है। कॉकटेल 2 ने पहला वाला काम किया था, एक के बाद एक चार्ट बस्टर्स, और उन्हीं में से एक इस सीजन का सबसे खूबसूरत लव सॉन्ग है। नंबर 11 पर दिस इज द किंग अरिजीत सिंह विद द सॉन्ग तुझको। नंबर 11।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 10.

0: गुरु रंधावा के हिट फैक्ट्री से एक और चार्ट बस्टर केयर सिर्फ दो हफ्तों में टॉप 10 में आ गया है। और ऑनेस्टली अगर परफॉर्मर्स की बात चली है तो सनी देओल का नाम उस लिस्ट में हम कैसे ना लें। हाल ही में उनकी एक फिल्म इक्का का टीजर मैंने बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखा और उसमें सनी देओल को फिर से लॉयर के रूप में देखते ही मुझे एक बात समझ आ गई। अगर आप 2005 के बाद पैदा हुए हैं ना तो शायद तारीख पे तारीख आपके लिए सिर्फ एक मीम होगा। लेकिन मीम तो वो बाद में बना, पहले वो सिनेमा था। 34 साल पहले दामिनी नाम की एक फिल्म में सनी देओल ने एक अदालत के सीन को इतना आइकॉनिक बना दिया कि उसके डायलॉग्स आज भी लोग कोट करते हुए नहीं थकते।
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिलोट इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। मिलोट दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा।
0: आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सिर्फ तारीख पे तारीख ही नहीं, 2.5 किलो का हाथ भी इसी फिल्म की देन है। नाउ इक्का का टीजर उस याद को भी सल्यूट कर रहा है और तब समझ आता है कि कुछ परफॉर्मेंसेस फ्राइडे से संडे तक नहीं जीती, 3 दशक तक जिंदा रहती हैं और उनके डायलॉग्स 30 साल बाद भी हमारे दिल में जिंदा रहते हैं। और कुछ फिल्मों का सफर थिएटर्स में 30 दिन भी मुश्किल से कटता है। है जवानी तो इश्क होना है इज डाउन टू मे बी 1 or 2 शोज एट द सिनेमा हॉल्स, लेकिन उसका साउंड ट्रैक अभी भी लड़ रहा है, ये जंग लड़ रहा है। इस हफ्ते नंबर 9 पर ये है वाओ।
2: नंबर 9 वाओ।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 8

हैव नेवर केयर्ड अबाउट बॉक्स ऑफिस नंबर्स. मुझे सच में कभी फर्क नहीं पड़ा. अगर पड़ा होता तो पान सिंह तोमर, कहानी, तनु वेजमनु और क्वीन जैसी फिल्में मैं थिएटर्स देखने कभी नहीं जाता. बट 2026 में नंबर्स हैव स्टार्टेड मीनिंग समथिंग, राइट? कॉकटेल 2 ने अभी हाल फिलहाल ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. एक वक्त था जब ये बड़ी न्यूज हो सकती थी, आज ये बस एक नंबर लगता है. और शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमने फिल्मों को देखना कम, उन्हें कंपेयर करना ज्यादा शुरू कर दिया है. एक तरफ धुरंधर जैसी इवेंट फिल्म्स हैं, जिन्हें देखना सिर्फ फिल्म देखना नहीं, एक कल्चरल मोमेंट बन जाता है. नंबर 6.

0: गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर इज ऑन नंबर 6, एक ऐसी फिल्म जो 3,000 करोड़ के फिगर्स टच कर रही है। एंड देन दूसरी तरफ वो फिल्में जो शायद ओपनिंग वीकेंड की हेडलाइंस ना जीतें, लेकिन वक्त जरूर जीत लेती हैं। सबसे बड़ा नुकसान कलेक्शंस का नहीं हुआ, उस बीच वाली फिल्म का हुआ। वो फिल्म जो ना फ्रेंचाइज थी, ना सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा थी, ना उसके पास 500 करोड़ का बजट था, बस एक ईमानदार कहानी होती थी उन फिल्मों में और उसे कहने का हौसला होता था। सच कहूं, मुझे हिंदी सिनेमा का वही चेहरा सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि उसी ने हमें कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें हम बॉक्स ऑफिस से नहीं अपने दिल से याद रखते हैं। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग एक ऐसी फिल्म से है, दम लगा के हायशा पपॉन की आवाज में। दिस इज मोमो के धागे।
1: Special request song. Yeah.

Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 5.

0: धुरंधर टू का आरी आरी जब जब सुनाई देता है कहीं भी, उसके साथ धूल मिट्टी और देसी स्वैगर की वो खुशबू भी साथ आती है। लेकिन बॉलीवुड की एक और पुरानी आदत है और उसे बॉलीवुड ने कभी छोड़ा ही नहीं, दुनिया भर की जुबानों से जो बे इंतहा इश्क है। कभी हम स्पेन चले जाते हैं,
1: tan de repente y da sentido toda mi vida con tu querer.
0: तो कभी हमारा रंग ही बेशरम हो जाता है।

कभी श्रीलंका की भाषा सिनेला में हम मणिके सुन लेते हैं। और प्रीतम दा तो शायद इस गेम के सबसे बड़े प्लेयर हैं। रिमेम्बर तेरा होने लगा हूँ। शाइनिंग

अंग्रेजी लव्स इंडियन मेलोडी. फनीली इनफ बॉलीवुड कभी फॉरेन लैंग्वेज में गाने नहीं बनाता, वो सिर्फ हिंदी गानों को एक पासपोर्ट दे देता है. गाना चाहे स्पेन चले जाए, इटली घुमाए या फिर श्रीलंका से होकर निकले, दिल उसका हमेशा हिंदी में ही धड़कता है. और शायद इसलिए ये गाने फैशनेबल लगते हैं, ग्लोबल लगते हैं, लेकिन टोटली अपने लगते हैं. इस हफ्ते नंबर 3 पर कॉकटेल 2 का वो समर एंथम जिसमें इटली का रंग है और बॉलीवुड का दिल है. दिस इज राघव चैतन्य विद माशुका. नंबर 3.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 2.

0: सिर्फ चार ही हफ्तों में ऊंचा लंबा कद हैज क्लाइम्ब टू नंबर टू। पुराना हुक, नई पैकेजिंग एंड मुझे आनंद राज आनंद साहब के लिए इतनी खुशी हो रही है। उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में साइन की हैं एंड द मैन डिजर्व्स इट ऑल। और एक बार फिर बॉलीवुड ने साबित कर दिया है कि सीक्वल सिर्फ फिल्मों के नहीं होते, गाने भी दूसरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन एक सीक्वल ऐसा भी आ रहा है जहां एक्साइटमेंट फिल्म से ज्यादा उसके म्यूजिक को लेकर है, आवारापन 2। और शायद उसकी वजह यह है कि आवारापन को कल्ट उसकी कहानी ने नहीं, उसके म्यूजिक ने बनाया था। दो गाने ऐसे आए थे जो कभी किसी की प्लेलिस्ट से बाहर ही नहीं निकल पाए।
1: तो फिर आओ मुझको सताओ।
0: And then the one that became a timeless heartbreak classic.
1: फिर

हर सीक्वल पहली फिल्म से बड़ा बनना चाहती है, लेकिन आवारापन 2 को सिर्फ एक चीज मैच करनी है, अपनी वो साउंडट्रैक। और यकीन मानिए, वो एवरेस्ट चढ़ने जैसा चैलेंज है, क्योंकि कुछ एल्बम्स सिर्फ हिट नहीं होती, वो एक जेनरेशन की यादों में परमानेंटली डाउनलोड हो जाती हैं। अगर आवारापन 2 ने वही एहसास फिर से जिंदा कर दिया तो मिलेनियल्स सिर्फ टिकट्स नहीं खरीदेंगे, वो अपनी यादें दोबारा जीने जाएंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 20 हफ्तों से यादें नहीं, हिस्ट्री लिख रहा है एक और साउंडट्रैक। 20 हफ्ते ऑफ बीइंग द अनडिस्प्यूटेड नंबर वन, रील से लेकर शादियों तक इंडिया का नंबर वन गाना। जैस्मिन सैंडलर्स, मधुबंती बागची, शरारत करने वाले हैं फिर से। नंबर वन।

0: इतने गाने, लेकिन इनमें से कितने अगले हफ्ते तक रह पाएंगे और कितने सालों बाद भी साथ रह जाएंगे, इस सफर का हिसाब किताब हम ही रखते हैं। लेकिन इस बार का हिसाब होता है खत्म। शरारत कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन सॉन्ग। मिर्ची टॉप 20 विल बी बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। तो अगली बार तक सिरे ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

हेलो पीपल, वीकेंड फाइनली नॉक कर रहा है और क्लब मिर्च ऑफिशियली ऑन हो चुका है। बाहर बारिश की बूंदे, अंदर बेस की धूम, तो वॉल्यूम फुल करो, मूड कूल करो और डांस फ्लोर हो या बोर्डम, गाड़ी हो या बालकनी, आज रात सिर्फ एक ही रूल है, नो रूल्स ओनली गुड वाइब्स। मैं हूँ मिर्ची ऑयोंटिक एंड विद मी इज डीजे रिचर्ड। अगले कुछ घंटों तक पार्टी नॉनस्टॉप, हिट्स बैक टू बैक और वर्ल्ड कप फीवर के साथ बारिश वाली मस्ती भी। वेलकम टू क्लब मिर्ची, लेट्स गो।

वीकेंड का सीन सिंपल है, फोन साइलेंट, वरीज ऑफलाइन और म्यूजिक फुल वॉल्यूम, बारिश को बैकग्राउंड डांसर बना दो और खुद बन जाओ टुनाइट्स मेन कैरेक्टर। क्लब मिर्ची इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका, लेट्स गो।

0: वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्डन मिर्ची और योमतिका विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।
1: वो काम चाके रखना जिन्हें पंजड़ा बोना, पंजाबी आ गया तो चिल्ला।

फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर आज रात किसी गोल के बाद पड़ोस से जोर का चीयर सुनाई दे, डोंट पैनिक। फुटबॉल लवर्स आर सिंपली लिविंग द बेस्ट लाइफ, और हम भी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका।

मानसून की रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सो वेयर एवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर। डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका विद यू, लेट्स गो।

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है, टेंशन किस बात की? क्लब मिर्ची है ना, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके पक्के दोस्त। लेट्स गो बेबी।

लाइफ को कभी कभी शफल पे छोड़ देना चाहिए, पता नहीं अगला सरप्राइज एक फेवरेट गाना हो या एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी। एंजॉय एवरी बीट विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

फुटबॉल वर्ल्ड कप का फीवर भी फुल ऑन है। हर पास पे टेंशन, हर गोल पे सेलिब्रेशन, और हर सेलिब्रेशन के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाना तो बनता है। तो सीट बेल्ट बांधो, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्लब मिर्ची कंटिन्यूज विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका।

वैसे पार्टी सिर्फ रेडियो तक ही क्यों? बिहाइंड द सीन्स क्रेजी रील्स और मस्त कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को। पार्टी कंटिन्यूज ऑन एयर भी और ऑनलाइन भी। क्लब मिर्ची इट इज विद मी मिर्ची और योंतिका।

Until dawn.

का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

बारिश की स्मेल, फ्रेश प्लेलिस्ट और वीकेंड का थ्रिल, बस इसी कॉम्बो के लिए तो पूरा हफ्ता वेट करते हैं। अब डांस करना कंपलसरी है विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ऑन दिका।

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका विद यू एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen.

फेरी लाइट्स चल रही है या कार की विंडशील्ड पे बारिश नाच रही है तो साउंड ट्रैक भी प्रीमियम होना चाहिए। वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची, लेट्स कीप द वीकेंड अलाइव विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका बेबी।

छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज स्पीड से ज्यादा सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दीजिए। वेट रोड्स पे ब्रेक्स को टाइम लगता है लेकिन एक्सीडेंट्स को नहीं। सीट बेल्ट ऑन रखिए, फोन साइड में रखिए और सेफली घर पहुंचिए। पार्टी बाद में भी होती रहेगी। डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑयोमटिका आते हैं ना क्लब मिर्ची लेके हर हफ्ते।

म्यूजिक का वॉल्यूम हाई हो सकता है लेकिन स्माइल उससे भी हाई होनी चाहिए। वीकेंड है बॉस, डांस करो, गाओ, बारिश एंजॉय करो और क्लब मिर्ची के साथ गुड वाइब्स स्प्रेड करते रहो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका विद यू टुनाइट।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओ योम दिखा विद यू टुनाइट, लेट्स गो।

वीकेंड के प्लान सक्सेसफुल हो या कैंसिल, प्लेलिस्ट कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योर टिकट। सो वेदर यू आर एट अ हाउस पार्टी, कैफे या अपने रूम में सोलो कॉन्सर्ट कर रहे हो, क्लब मिर्ची इज राइट देयर विद यू। लेट्स गो।

पूरी रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सो वेयरएवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर। डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑयल विद यू, लेट्स गो।

बारिश का अपना स्वैग होता है भाई, कभी रोमांटिक कभी फुल फिल्मी, और हम लेकर आए हैं इसी वाइब के ब्लॉकबस्टर ट्रैक्स। कीप स्माइलिंग कीप ग्रूविंग विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिकांत क्लब मिर्ची।

वर्ल्ड कप का सीजन है, हर मैच एक इमोशन और हर गोल एक सेलिब्रेशन। टीम कोई भी हो, म्यूजिक सबका कॉमन लैंग्वेज है। लेट्स कीप द एनर्जी रोलिंग विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटिका।

कभी डांस फ्लोर पे स्टेप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एटीट्यूड होना चाहिए 100%. सो फॉरगेट द मूव्स, जस्ट फील द म्यूजिक. दैट्स द क्लब मिर्ची वे विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर डिका.

0: Mirchi. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are going to go.

आपका फीवर भी फुल ऑन है। हर पास पे टेंशन, हर गोल पे सेलिब्रेशन, और हर सेलिब्रेशन के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाना तो बनता है। तो सीट बेल्ट बांधो, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्लब मिर्ची कंटिन्यूज विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका।

वीकेंड का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल विद यू, एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर, क्लब मिर्ची।

रेन प्लस फ्रेंड्स प्लस म्यूजिक इक्वल्स टू वीकेंड गोल्स। और अगर फ्रेंड्स बिजी है तो स्पीकर को बेस्ट फ्रेंड बना लो, साथ डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो का तो है ही कंपनी देने के लिए। लेट्स गो अगेन।

रेडियो के बाद भी मिलते रहना यार फन रील्स बिहाइंड द माइक मोमेंट्स और एवरीडे मैडनेस के लिए फॉलो मी अयोंतिका ऑन सोशल मीडिया AYANTIKA. वीकेंड वाइब्स कंटिन्यू ऑन योर फीड टू. लेट्स गो. दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची अयोंतिका.

I don't know.

अभी खिड़की खोलो और बारिश की हवा को फील करो, फिर वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दो। कुछ मोमेंट्स को सिर्फ एंजॉय किया जाता है, एक्सप्लेन नहीं। DJ Richard Mirchi, Oyo Antika with you on Club Mirchi.

सैटरडे नाइट हो या संडे चिल, एक बात फिक्स है, अच्छा म्यूजिक कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। और जब क्लब मिर्ची हो साथ तो मूड ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो ही जाता है। डीजे मिर्ची और योंतिका विद यू टुनाइट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen.

सुन रिमाइंडर, अगर रोड्स पे वाटर लॉगिंग दिखे तो अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, स्लो ड्राइव करिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और फ्लडेड रोड्स को अवॉइड कीजिए। बारिश का मजा तभी है जब आप सेफली घर पहुंच जाए। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची टुनाइट।

वीकेंड खत्म हो जाएगा लेकिन आज की मेमोरीज और ये गाने प्लेलिस्ट में हमेशा रहेंगे। सो लाफ अ लिटिल लाउडर, डांस अ लिटिल लॉन्गर और हर बीट को दिल से फील करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विथ यू टुनाइट।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे लुचाटन मिर्ची और योन टिका विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

वीकेंड का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका विद यू, एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर, क्लब मिर्ची।

रेन प्लस फ्रेंड्स प्लस म्यूजिक इक्वल्स टू वीकेंड गोल्स। और अगर फ्रेंड्स बिजी है तो स्पीकर को बेस्ट फ्रेंड बना लो, साथ डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो का तो है ही कंपनी देने के लिए। लेट्स गो अगेन।

रेडियो के बाद भी मिलते रहना यार फन रील्स बिहाइंड द माइक मोमेंट्स और एवरीडे मैडनेस के लिए फॉलो मी अयंतिका ऑन सोशल मीडिया AYANTIKA. वीकेंड वाइब्स कंटिन्यू ऑन योर फीड टू. लेट्स गो. दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची अयंतिका.

अपनी खिड़की खोलो और बारिश की हवा को फील करो, फिर वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दो। कुछ मोमेंट्स को सिर्फ एंजॉय किया जाता है, एक्सप्लेन नहीं। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका विद यू ऑन क्लब मिर्ची।

नाइट हो या संडे चिल, एक बात फिक्स है, अच्छा म्यूजिक कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, और जब क्लब मिर्ची हो साथ तो मूड ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो ही जाता है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका विद यू टुनाइट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen.

और अगर रोड पे वाटर लॉगिंग दिखे तो अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, स्लो ड्राइव करिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और फ्लडेड रोड्स को अवॉइड कीजिए। बारिश का मजा तभी है जब आप सेफली घर पहुंच जाए। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची टुनाइट।

वीकेंड खत्म हो जाएगा लेकिन आज की मेमोरीज और ये गाने प्लेलिस्ट में हमेशा रहेंगे। सो लाफ अ लिटिल लाउडर, डांस अ लिटिल लॉन्गर और हर बीट को दिल से फील करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विथ यू टुनाइट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

Mirchi. It's hot.

0: झुमका
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: कन्हैया लाल की।

0: भजन अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है भजन कुमार, फॉलो मी ऑन माई चैनल।
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain The Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
1: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। क्यों हनुमान? बिकॉज यू नो टुडे मॉर्निंग मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था। डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी कि सूर्य नमस्कार सुबह करना ही है बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। और मैंने ये सुना है कि सूर्य नमस्कार वॉज डिजाइंड बाय हनुमान जी, और हनुमान जी ने ये सूर्य नमस्कार किया था क्योंकि उनके गुरु थे सूर्य भगवान। द सन वॉज हिज टीचर, हिज गुरु। तो एज ए दक्षिणा उन्होंने सूर्य नमस्कार की निर्माण की थी। तो जब मैं सूर्य नमस्कार आज कर रहा था तो हनुमान जी की याद आ रही थी, एंड आई सेड यू नो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट द डे देन बाय डिस्कसिंग हनुमान जी के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। क्योंकि देवदत्त पटनायक शो में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम वेद पुराण, हमारे रीति रिवाज के बारे में डिस्कस करते हैं, यज्ञ हवन पूजा का डिस्कशन करते हैं, उत्सव के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारी कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आध्यात्मिक कल्चर है, जो भारत की एक परंपरा है, हमारी संप्रदाय है। एंड दीज थॉट्स इन अ वेरी पॉजिटिव सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकता है। यू नो सूर्य नमस्कार फॉर एग्जांपल हेल्प्स आवर बॉडी, एंड यू नो यू लुक एट द मॉर्निंग राइजिंग सन एंड द सन इज टेलिंग यू गेट अप एंड मूव ऑन, एंड दैट्स व्हाट आई डू। सो आज पूरे शो में हम डिस्कस करेंगे हनुमान जी के बारे में, मारुति के बारे में, अंजनेय के बारे में, उनके अलग अलग कहानियों के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show.
0: माइथोलॉजी का वो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो सबसे पहले हनुमान के मुंह से निकला क्या था? बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आज हम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं और हनुमान जी की जब बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज जो हमारे मन में आना चाहिए इज अबाउट स्ट्रेंथ, बिकॉज हनुमान जी इज वेरी स्ट्रांग। यू नो, एक चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वी हैव बिकम वेरी मॉडर्न। यू नो, आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, पहले जमाने में हम लोग बैकवर्ड थे, अभी हम यू नो वी हैव बिकम कूल बिकॉज हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास गाड़ियां हैं। बट यू नो, एक चीज कनेक्ट करता है सब कुछ। यू नो, कल भी आज भी सब समय इट ऑल टाइम्स देयर इज वन थिंग व्हिच कनेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य जो है ना वो असुरक्षित होता है, इनसिक्योर होता है, एंड वी आर ऑल इनसिक्योर। कुछ ना कुछ, जितनी अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग्स आर इनसिक्योर। और जब हम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो भगवान की बात आती है, और हिंदू धर्म में हनुमान जी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि ही इज, जैसे बनारस में कहते हैं, वो संकट मोचन है। ही टेक्स अवे द प्रॉब्लम्स, हमारे जो असुरक्षता है ही टेक्स इट अवे, एंड ही इज अ वेरी यूनिक गॉड। बिकॉज एक बलवान तो है ही, उनके हाथ में तो गदा होता है, एंड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बट एट अनदर लेवल ही इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल। वो कविताओं से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि पहली बार संस्कृत शब्द उन्हीं के मुंह से निकला था। सो ही इज अ विद्वान एज वेल एज बलवान, एंड वी ऑलवेज ट्राइंग टू सेपरेट इट। हम हमेशा बोलते हैं कि जो बलवान होता है वो विद्वान नहीं हो सकता, और जो विद्वान होता है वो बलवान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यू कैन गो टू द जिम एंड बी यू नो स्ट्रांग एंड डू एक्सरसाइज एंड बी गुड इन स्पोर्ट, बट यू कैन ऑल्सो बी गुड इन स्टडीज, एंड यू कैन बी अ स्मार्ट गाय, यू कैन गो टू द बेस्ट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, बिजनेस। यू नो, हम ये डिवाइड करते रहते हैं दुनिया को, और आई थिंक ये आइडिया है। मैं जब भी हनुमान के बारे में सोचता हूँ मैं बोलता हूँ कि कल भी वो रेलिवेंट थे, आज भी वो रेलिवेंट हैं, क्योंकि वो बलवान विद्वान हैं। वो हमारे भीतर के पशु को जागृत करते हैं, रिमाइंड्स अस दैट देयर इज एन एनिमल इनसाइड अस, और हमें मनुष्य बनना है। यू नो, ही इज अ वानर, वन का नर। मीन्स सम पीपल से इट इज मंकी, सम पीपल से इट इज एप लाइक मैन, सम से इट इज अ ट्राइबल पर्सन, लेकिन क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है। आर जर्नी, हमारी जो यात्रा है, इज फ्रॉम पशु टू पुरुष एंड टू बिकम बलवान एंड विद्वान। ऐसे ही बातें हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर कमिंग योर वे। वी आर गोइंग टू डिस्कस हनुमान जी के स्टोरीज, नॉट जस्ट फ्रॉम रामायण बट फ्रॉम मेनी फोक ट्रेडिशंस। तो स्टे ट्यून्ड।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान ने कैसे तोड़ा रावण का घमंड, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: सभी समान।
1: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। माय फेवरेट हनुमान स्टोरी इज जब हनुमान रावण को मिलता है लंका में, एंड दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। तो रावण इज द किंग ऑफ लंका, राक्षसों के राजा हैं, ही इज एजुकेटेड, ही नोज नाट्य शास्त्र, उन्हें गंधर्व विद्या, उनको वेदों का ज्ञान है, उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान है, ही इज एजुकेटेड एंड इज वेरी पावरफुल। उनके पास पुष्पक विमान है, वो सोने के लंका में राज करते हैं, और उनको पता चलता है कि उनके अशोक वाटिका में एक बंदर ने कुछ तो गड़बड़ किया है, और बंदर को पकड़ के लोग लेके आ रहे हैं, एक बंदर कौन है। और जब बंदर आता है उसके सामने, वो बंदर संस्कृत में बात करता है उनके साथ, एकदम परफेक्ट संस्कृत में बात करता है। तो ही शॉक्ड बिकॉज संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, विद्वानों की भाषा है, ये बंदर कैसे बात कर सकता है। और फिर वो कहता है, बंदर बहुत डेंजरस शब्द बोलता है, कि कहता है कि मैं राम का दूत हूँ, आई एम अ मैसेंजर ऑफ राम, तो अगर मैं दूत हूँ तो यू शुड ट्रीट मी लाइक अ दूत, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, आप मुझे बांध के लाए हो यहाँ पे, मुझे एक आसन दीजिए, मेरा सत्कार कीजिए ताकि मैं आपको एक मैसेज दे सकूँ। और रावण कहता है कि बंदर, दूत, राम, ये कौन है। एंड ही इज लाइक क्वाइट डिस्गस्टेड, बहुत डिसमिसिव होता है कि चल अपने आप को समझ रहा है राम दूत। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देख, कोई भी तुम्हारे घर में आता है ना, तुम उसे सत्कार करते हो, इंसल्ट नहीं करते हो, मैं तुम्हारे घर पहले बार आया हूँ, यू शुड ट्रीट मी नाइसली। और अगर तुम, यू डोंट ट्रीट मी नाइसली, मेरा इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लूंगा, तुम अगर मुझे आसन नहीं दोगे तो मैं अपने आप को आसन दे दूंगा। और अपनी पूंछ से वो एक आसन बनाते हैं, और एक ऐसे आसन बनाते हैं जो रावण के सिंहासन से ऊपर होता है। मतलब रावण जो हमेशा सब लोगों को नीचे देखता है, वो हनुमान जी को ऊपर देखता है, और उसका घमंड वहां पे इज डिस्ट्रॉयड, कि ये बंदर संस्कृत बोलने वाला उसको एक सेकंड में बताता है कि भैया तेरी औकात क्या है। ये जो स्टोरी है ना, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, लेकिन सबको समझ में आता है। बताने से पता चलता है कि रावण हमारी जिंदगी में बहुत, रावण होते हैं, हम भी रावण होते हैं, सबको, हम चाहते हैं कि सब हमारे नीचे बैठे रहें, हम लोगों को, वी जज पीपल कि कैसे लोग होने चाहिए, बट सामने वाला हनुमान हो सकता है और वो हमें औकात दिखा देगा बहुत ही शांति से। और ये कहानियों में से ऐसी छोटी छोटी ज्ञान मिलती है, हमारा जो संस्कृति है, भारत धर्म है, हमारा जो कल्चर है, वो कहानियों के माध्यम से आता है। जैसे एक छोटी सी एपिसोड रामायण की, हनुमान जी और रावण के बीच में। एंड ऐसे ही स्टोरीज आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची, तो स्टे ट्यून्ड।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
3: द देवदत्त पटनायक शो।
4: हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: तो वेलकम टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान को डिस्कस कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स इन हिंदुइज्म।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
0: द देवदत्त पटनायक शो,
2: कॉलिंग देवदत्त
0: ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: गांव-गांव में उनकी मूर्तियां होती हैं, पूजा होती है। सो इफ आई एम श्योर यू हैव मेनी क्वेश्चंस ऑन हनुमान, तो जो भी क्वेश्चन है प्लीज पिक अप द फोन एंड आस्क मी द क्वेश्चन। आई एम एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। हेलो, देवदत्त हियर।
3: हाय, माय नेम इज अक्षता एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। मेरा क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या?
1: थैंक्स अक्षता फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो सिंदूर है, लाल रंग जो होता है, ये भारत में से मंगल मतलब ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है, ऑस्पिशियस कलर माना जाता है, और हनुमान जी को हम मंगल मूर्ति भी मानते हैं। सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, इसलिए उनको लाल रंग दिया जाता है। जैसे गणपति जी को भी मंगल मूर्ति मानते हैं, इसलिए उसके लाल रंग दिया जाता है। सो लाल रंग मांगल्य, मांगल्य इज प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, गुड लक, चार्म, तो ये देवी के साथ जुड़ा हुआ है। और नॉर्मली लाल रंग हम देवी को जोड़ते थे, और बोथ गणेश एंड हनुमान आर लिंक्ड टू द शाक्त परंपरा, और इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को मांगल्य बनाने के लिए, नहीं तो वो बहुत ही यू नो वेरी मैस्कुलिन इमेज जो है, वायलेंट इमेज है, बिकॉज उसके हाथ में वेपन्स हैं एंड ही इज फाइटिंग। लेकिन जब आप लाल लगाते हो तो वो शुभ बन जाता है, दैट इज द रीजन। आजकल लोग ऑरेंज कलर दे रहे हैं जो वैरागियों का रंग है, लेकिन मंगल रंग इज लाल, इसलिए शादी का जोड़ा भी लाल होता है, चूड़ियां लाल होती हैं, दैट इज द रीजन। ऑफ कोर्स देयर आर स्टोरीज कि उन्होंने देखा कि सीता जी लाल रंग सिंदूर डाल रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को ढक दिया, ये सब लोक कथाएं हैं। लेकिन क्रियाओं की तरफ, फ्रॉम रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, लाल जहां लगा जाएगा, जैसे अलता होगा, ये होगा, इसे मंगल का शुभ है, शाक्त सिंबल है, देवी का चिन्ह है। That is the purpose.
3: All right. Thank you so much for the answer. Thank you.
1: Welcome, Akshata. तो अक्षता का क्वेश्चन वॉज अबाउट सिंदूर रंग, और ये लाल रंग जो होता है ये ट्रेडिशनल कलर है जो हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। नॉर्मली जो मेल गॉड्स होते हैं उनको लाल रंग वेरी रेयरली दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को देवी का सेवक माना गया है, वो प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, इसलिए लाल रंग दिया जाता है।
0: देवदत्त पटनायक शो। क्या है हनुमान और पंचमुखी हनुमान में अंतर, बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची.
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची.
2: द देवदत्त पटनायक शो.
1: द देवदत्त पटनायक शो
2: ऑन रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.
0: सो नाउ आई वांट टू डिस्कस माय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमेजेस ऑफ हनुमान, जो पंचमुखी हनुमान जिसके कहते हैं. तो पंचमुखी हनुमान की मूर्ति अगर आप देखे होंगे तो इट इज नॉट, यू नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टैचू. नॉर्मली हनुमान जी की मूर्ति राम के मंदिर में होती है और वो वहां पे एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं राम के चरण पे. लेकिन पंचमुखी हनुमान जो होता है वो मंदिर में केवल हनुमान जी की मूर्ति होती है वो, और उनके दो हाथ नहीं, उनके 10 हाथ होते हैं और उनके एक सर नहीं, 5 सर होते हैं और एक ही सर वानर का रूप लेता है. बाकी 4 जो है, एक घोड़े का होता है, एक शेर का होता है, एक वराह या जंगली सुअर का होता है और एक गरुड़ का होता है. पंचमुखी हनुमान की स्टोरी हमें अद्भुत रामायण से आती है. अद्भुत रामायण में कहते हैं कि राम गेट्स डिसअपियर्स और उसे पाताल लोक में कोई लेके चला जाता है और हनुमान जी हैज नाउ टू डू एवरीथिंग एंड फाइंड रेस्क्यू राम. तो स्टोरी है हाउ डज हनुमान गो टू पाताल लोक. इसलिए पंचमुखी हनुमान को कभी कभी लोग पाताली हनुमान भी बोलते हैं और पाताली हनुमान कुछ मंदिरों में उन्हें अपसाइड डाउन रखा जाता है बिकॉज वो पाताल में गए हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, ये पंचमुखी क्यों बने हैं? क्योंकि हनुमान जी वहां पे डिस्कवर्स कि वो केवल वानर नहीं है, उनके अंदर बहुत क्षमता है. वो गरुड़ के जैसे भी काम कर सकते हैं, वो वराह के जैसे काम कर सकते हैं, वो शेर की भांति काम कर सकते हैं, वो घोड़े के जैसे भी काम कर सकते हैं. उनके अंदर कितने कैपेबिलिटीज हैं. ये मूर्ति है दिखाने के लिए कि जो एक वानर है वो महाबली कैसे बना. सो रामदास से महाबली की यात्रा, द ट्रांसफॉर्मेशन. जो सिंपल एक रामदास था जो इंस्ट्रक्शंस लेता था, वो कार्य करता था, जो राम बोलते थे वो करते थे, लेकिन पंचमुखी हनुमान के जगह में वो कर्ता बन जाते हैं. ही इज द पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, ही सॉल्व्स प्रॉब्लम्स और अंदर की अपनी जो पोटेंशियल है डिस्कवर करते हैं. आई एम श्योर आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है टू डिस्कवर एंड यू मस्ट फाइंड दिस पोटेंशियल सो दैट द होल डे यू फाइंड द हनुमान इनसाइड यू एंड क्रॉस द ओशन टू सक्सेस. So, best wishes and stay tuned for more interesting questions and answers and stories on the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
3: हमें ही नहीं हनुमान को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. कब और क्यों बताएंगे देवदत्त.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्च। यू नो, मैं हनुमान के बारे में बहुत लिखा हूँ मेरी किताबों में, मेरे एसेज में। मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर एक किताब लिखी है, माय हनुमान चालीसा, जहाँ पे यू नो हर जो दोहा चौपाई उसके अंदर इतना ज्ञान है हनुमान जी के कथाओं में कि हर लाइन में ज्ञान होता है, एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, एक विश, यू नो, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हनुमान जी के माध्यम से हमें कितनी चीजें बताई जा रही हैं। सो मेनी आइडियाज आर बीइंग प्रेजेंटेड टू अस। और ऐसे स्टोरीज जब आते रहते हैं तो एक स्टोरी है यू नो विच इज यू नो लिंक्ड टू हनुमान, विच यू नो ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट भगवान भी कितने हम्बल होते हैं हमारे सामने। कहते हैं कि जब हनुमान जी यू नो लंका के लिए जा रहे थे, देन ही वाज यू नो वो शोर ऑफ समुद्र के बगल में थे और सब बोल रहे थे, ऑल वानर्स वर गैदर्ड ओवर देयर, सामने समुंदर दिखाई दे रहा था, द ब्लू सी स्ट्रेचिंग अक्रॉस, कहीं बियॉन्ड होराइजन में सोने की लंका थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कितने दूर है होने वाला है ये। तो सब वानर बोल रहे थे इतना दूर तो हम छलांग नहीं मार सकते, कोई बोल रहा था हमें इतना योजन, योजन मींस इट्स अ मेजरमेंट टूल कि कितने माइल्स होते हैं यू नो, तो योजन कितने योजन तुम जा सकते हो। सो कोई बोल रहा था हमें 10 योजन जा सकते हो, कोई 50 योजन, तो हनुमान कुछ नहीं बोल रहा था, वो चुप बैठा था। तो जांबवन जो बैर जो भालू थे वो जाके हनुमान जी से पूछते हैं कि तू कितना कर सकता है, एंड हनुमान से मुझे पता नहीं मेरे में कितनी ताकत है। इमेजिन हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, ही इज फुल ऑफ डाउट। एंड दैट टाइम हनुमान जी को जांबवन उनका वर्णन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और बोलते हैं कि आप कितने महान हो, डू यू नो हाउ ग्रेट यू आर, आप शिव जी के एक अवतार हो, आप सूर्य भगवान से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वायु आपके पिता हैं, तो यू हैव ऑल द विजडम, आप प्रिय हो राम जी के, उन्होंने आपको भाई जैसे माना है। सो इतना स्ट्रेंथ है, सो ही कीप्स प्रेजिंग हिम एंड कीप्स प्रेजिंग हिम, एंड हनुमान जब ये सुनते हैं, ही स्टार्ट्स ग्रोइंग इन साइज, ही बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, ही बिकम्स सो बिग कि उनकी जो सर बोलते हैं कि इट गोज बियॉन्ड द स्काई, इतने लंबे हो जाते हैं, पहाड़ भी उनके सामने छोटे छोटे दिखने लगते हैं, एंड देन वो छलांग मार के जाते हैं लंका के तरफ। और मतलब हनुमान जी को भी टू डिस्कवर हिज पावर्स कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है, एंड वी ऑल हैव अ हनुमान इनसाइड अस, हम सबको मोटिवेशन चाहिए। यू नो लोग हमेशा हमें हमारी नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं कि अरे तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता, तू ये नहीं करता है, बहुत कम लोग होते हैं जो हमें हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं। यू नो भगवान की जब आरती जब हम करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चालीसा में देखिए भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, वैसे ही जब हम आरती करते हैं तो भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं। मतलब हर आदमी को आरती पसंद है, थोड़ा एक आध बार मेरे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको आप प्लीज वर्णन कीजिए। टेल योर फ्रेंड्स दैट दे आर गुड एट मे बी इन पोएट्री, मे बी दे आर गुड एज क्रिएटिव पीपल, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, दे ड्रेस वेल, छोटी छोटी बातें उनके अंदर जो हनुमान है उसे जागृत करते हैं। आई थिंक दैट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी ऑफ हनुमान बिकमिंग लाइक अ सुपरमैन, जंपिंग अक्रॉस द स्काइज एंड गोइंग टू सोने की लंका। तो ऐसे ही आइडियाज हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान की जाति से जुड़ा एक और सवाल जब उठा तो क्या कहा देवदत्त ने, कीप लिसनिंग।

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: हेलो देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi.
3: Hi, मेरा नाम भास्कर है and I'm a huge fan of yours.
0: Thank you so much.
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: जी,
3: तो हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचे की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली है एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे। जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहां जात पात की बातें नहीं होती। जहां आत्मज्ञान नहीं होता, जहां अहंकार होता है, वहां जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। वी डोंट वांट टू डिस्कस दिस जाति, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माय सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यार, हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। शो अभी खत्म होने वाला है और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज अ गॉड इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी की वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते रहे। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi #devdattonmirchi devdattonmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: द व्यूज एक्सप्रेस्ड इन द देवदत्त पटनायक शो आर द होस्ट्स अलोन, नॉट द चैनल्स।

0: बड़े होते होते रियलाइज होता है कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या चीज होती हैं, और हमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागने का मन करता है। लेकिन बचपन में उल्टा था, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ भागा करते थे कि मुझे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जल्दी बड़ा होना है।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi, and I still remember. हम या तो अपने छोटे भाई बहनों को पालने का काम किया करते थे, हमें बड़ा मजा आता था बड़े बनने में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में, या तो हमारे गली कूचे का, कॉलोनी का कोई भी पपी होता था या कोई किटन होती थी तो उसका जिम्मा हम ले लिया करते थे। मतलब अगर ऐसा कुछ मिल जाता था ना हमें, तो स्कूल से आए नहीं, बैग रखा नहीं और सीधे उस पपी या किटन के पास। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, बचपन में ना मैंने कुछ दिनों के लिए एक बिल्ली पाली थी, उसका नाम रखा था हमने हेमा। और है ना, उस बिल्ली का जिम्मा मैंने ऐसा लिया कि मैं अपना खाना पीना भूल जाया करती थी, उसी को देखा करती थी। उस बिल्ली ने हालांकि मुझे खूब स्क्रैचेस दिए, लेकिन फिर भी मैं उसकी मोहब्बत में इतनी पागल थी कि मैंने उसको पाला। लेकिन मेरी मोहब्बत ना उस बिल्ली की मोहब्बत से ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि वो बिल्ली मेरी मोहब्बत से ही डर गई यार। एक दिन वो बिल्ली पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और तब से लेकर आज तक हेमा सिर्फ और सिर्फ मेरी कहानियों में ही रह गई, वो मुझे कभी नहीं मिली। ऐसा ही कुछ अभी कल की बात है मेरे साथ हुआ, कि कल शाम को मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था और एक किटन मुझे नजर आया, एंड मैंने उसको देखा, मैंने उसको हाय बोला, एंड उसको लगा कि मैंने उसको घर के अंदर इनवाइट कर दिया है, और वो आ गया सीधा चल के। मैंने भी उसे मना नहीं किया, वो आया, मैंने उसे खिलाया पिलाया, थोड़ी देर में हमारी दोस्ती हो गई, जो कि मेरी बिल्लियों के साथ तब से लेकर आज तक नहीं हुई थी इतनी अच्छी तरीके से। एनीवेज, वो थोड़ी देर में आके मेरी गोद में बैठ गया, मैंने उसको खूब मसाजे दी, इतना प्यार किया, और मेरा दिल उसके ऊपर पूरी तरीके से आ चुका था। लेकिन ये थी एक छोटी सी लव स्टोरी, क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग वो बिल्ला भाग गया, एंड क्लियरली उस बिल्ले को मेरे अंदर रेड फ्लैग्स नजर आ गए थे, क्योंकि मुझे भी उससे हद से ज्यादा मोहब्बत जो हो गई थी, डर के मारे भाग गया होगा। बस आज का ये किस्सा पुराने हेमा के किस्से से जाके जुड़ गया, कि किस तरीके से हमें पेट से मोहब्बत हो जाया करती थी। शायद ये चीजें आज भी नहीं बदली हैं, वो अलग बात है कि यार एक किटन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन बिजली के बिल भरने में ना मुझे बड़ी मौत आती है। एनीवेज, अभी तो हम चलते हैं मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए उसी तरफ जहाँ 90s और अर्ली 2000 की दुनिया बसी हुई है। सो यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स ऑल।

0: 98.3 Mirchi. It's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
2: जीत मूवी का जो गाना है ना यारो यारा, उसकी जो कोरियोग्राफी है और उसके जो सिग्नेचर स्टेप्स हैं, वो भले हमें कितने भी फनी क्यों ना लगे, लेकिन आज भी जब किसी पार्टी में यारो यारा बज जाता है ना, हम वही स्टेप्स फॉलो करते हैं यार, अपना कुछ नया नहीं निकालते हैं।
1: मिर्ची VCR.
2: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, सनी पाजी तो छा गए थे जी इस स्टेप के बाद वाकई में. And छा गई थी ये फिल्म भी, हाँ. It was a super duper hit. लेकिन ये फिल्म की एक बड़ी खास बात रही, और वो ये कि 24 साल पहले करिश्मा कपूर के पेरेंट्स बबीता जी और रणधीर कपूर जो हैं, उन्होंने भी एक फिल्म करी थी जिसका नाम था जीत. एंड देन 24 साल बाद करिश्मा ऑल्सो डिड दिस फिल्म जिसका नाम था जीत. और ये फिल्म और भी ज्यादा खास हो जाती है बिकॉज ऑफ द रीजन कि जीत की सेट्स पर ही तबू एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म साजिद नाडियाडवाला, दे केम क्लोजर. वेल एक्चुअली तबू और साजिद नाडियाडवाला यूज टू बी फ्रेंड्स अर्लियर एज वेल, क्योंकि तबू दिव्या भारती की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी. एंड पोस्ट दिव्याज डेथ, तबू एंड साजिद नाडियाडवाला बिकेम फ्रेंड्स, एंड तबू कुड अंडरस्टैंड हिज इमोशंस एट दैट टाइम. लेकिन ये दोस्ती कब मोहब्बत में तब्दील हो गई दोनों को ही नहीं पता लगा. एंड दैट हैपेंड ऑन द सेट्स ऑफ जीत. इवेंचुअली इस रिश्ते ने कोई मोड़ नहीं लिया बिकॉज ऑफ द रीजन कि तबू फेल्ट कि साजिद नाडियाडवाला इमोशनली अवेलेबल ही नहीं थे. वो अपनी वाइफ दिव्या के लॉस से निकल ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से तबू डिसाइडेड टू मूव ऑन इन हर लाइफ. एंड देयर इज वेयर दिस रिलेशनशिप एंड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर बिगिंस. हालांकि साजिद नाडियाडवाला एंड तबू आर स्टिल रियली गुड फ्रेंड्स. साहिर लुधियानवी साहब का एक बड़ा ही फेमस शेर है, और ऐसी लव स्टोरी सुनती हो ना तो वो शेर मुझे अक्सर याद आ जाता है. कहते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा. स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: 90s की बड़ी हिट फिल्म जीत, इसके लिए कहा जाता है कि यार ये फिल्म वाज इंस्पायर्ड बाय टू ऑफ बॉलीवुड्स क्लासिक।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड दोस टू बॉलीवुड क्लासिक्स आर मुकद्दर का सिकंदर, जो कि ऑफ कोर्स अमित जी बच्चन जी की थी, एंड द अदर वन इज राजपूत, जो कि राजेश खन्ना स्टारर फिल्म थी। एंड इन दोनों मूवीज के अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि जीत में भी देखे गए हैं। अब ये इत्तेफाक है या इंस्पिरेशन है ये तो इस फिल्म के डायरेक्टर ही जाने, बट हाँ मुकद्दर का सिकंदर जिस तरीके की फिल्म थी उससे जीत फिल्म का जो काफी तालमेल है वो बैठता है। एंड जीत वॉज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसमें सलमान खान का गुड बॉय इमेज वाला रोल था, जिसमें वो एकदम मामाज बॉय सीधे साधे से लड़के थे। एंड सनी देओल ऑन द कॉन्ट्ररी ही वॉज प्लेइंग द नेगेटिव रोल, द आक्रोश वाला रोल। एंड आई थिंक सनी देओल का उस टाइम पर यही वाला जोन चल रहा था। लेकिन मजे की बात ये हुई कि सलमान खान इतने हाईलाइट नहीं हुए इस फिल्म के अंदर जितना सनी देओल हुए अपने रोल को लेकर, क्योंकि वो रोल इतना लाउड था कि सबने उसे देखा भी और सुना भी। तो हुआ ये कि इस फिल्म में सलमान खान की जो पोजिशन थी वो थोड़ा सा बैक सीट ले चुकी थी एंड सनी देओल फ्रंट पेज पे खेल रहे थे। लेकिन जब यही चीज डर मूवी में हुई, जहां शाहरुख खान के नेगेटिव कैरेक्टर ने सनी देओल के पॉजिटिव कैरेक्टर को ओवरशैडो कर दिया, तो सनी देओल बड़ा बुरा मान गए थे। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई यार, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या थी? ये तो किस्मत का खेल है यार, एक तरफ आप चले कहीं दूसरी तरफ कोई और चला, जिसकी किस्मत में चलना लिखा था वो चला और जिसकी किस्मत में लिखा था ना चलना तो वो ना चला। चलो अभी तो आप और मैं आगे चलते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: Coca-Cola. अभी यही वर्ड ना बिना होठों को टच किए बोल के बताओ। हाँ, फंस गए ना।
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड भले ही आज मैं डाइट कॉन्शियस होकर बिल्कुल ऑफ कोला ड्रिंक्स हो गई हूँ, लेकिन एज अ किड एड्स ये डिसाइड किया करते थे कि कौन सा कोला ड्रिंक खरीदना है, क्योंकि कभी कोई ड्रिंक कोई विनर स्कीम लाता था तो कभी कोई और। मैं तो ना बिल्कुल बिक जाती थी टू द मार्केटिंग आइडियाज, एंड आई यूज टू कलेक्ट एंड कीप कोक की बॉटल्स के ढक्कन, बिकॉज आई यूज टू फील लकी कि क्या पता ऐश्वर्या राय से मिलने का मौका ही मिल जाए। दो आई वॉजंट अ क्रेजी फैन ऑफ हर्स, लेकिन आई डेफिनेटली वाज स्टारस्ट्रक। और राजपाल यादव का ये एड, विच वॉज अ फन थिंग ऑन टीवी एट दैट टाइम, याद है आपको?
3: आपका फूटू रामू जी,
4: रामू जी,
5: इनकी तो किस्मत बदली यार।
2: लकी रामू थे ये इस एड के, और हम सोचते थे कि जब रामू लकी हो सकता है तो हम क्यों नहीं। कीप ट्राइंग, एंड ऑफ कोर्स मेरी गाड़ी कभी ऐश्वर्या राय तक नहीं पहुंची। हाँ, लेकिन मेरी घड़ी जरूर आगे बढ़ गई, वक्त बदल गया, मैं बड़ी हो गई और समझ में आ गया कि ये सब मार्केटिंग गिमिक्स थे यार। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आज बड़े होकर हम क्या ये कैमोमाइल टीज पीते हैं यार, अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए। टैल्कम पाउडर का नाम सुना है? ये
2: है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वाकई में यार, टैल्कम पाउडर की खुशबू सिर्फ खुशबू नहीं है भाई, थेरेपी है। मतलब ऐसा है कि अगर कोई टैल्कम पाउडर लगा के आया होता है ना, या कहीं से भी एकदम एक यू नो खुशबू सी आ जाती है, एक हवा में तैरती हुई खुशबू सी आ जाती है, तो भाई हम तो खो जाते हैं। हमारी लाइफ में अभी क्या चल रहा है ना, सब भूल जाते हैं। एंड नर्वस सिस्टम, आई टेल यू, वाकई में इतना काम डाउन हो जाता है ना, अपने आप जो जितना भी स्ट्रेस है ना, वो कहीं दिमाग के कोने में जाके छुप के डर के मारे बैठ जाता है, बिकॉज टैल्कम पाउडर की खुशबू जो है वो टेक ओवर कर लेती है यार। और ये सब तब है जब आज के जमाने में इतने भिन्न भिन्न प्रकार के परफ्यूम्स आ गए हैं। उस पर भी जब कभी टैल्कम पाउडर की खुशबू आती है ना यार, तो परफ्यूम्स की खुशबू से तो ऑफकोर्स अच्छा तो लगता है कि हाँ क्या खुशबू है, वाह वाह वाह, लेकिन टैल्कम पाउडर की खुशबू से जो नशा होता है और जो हमारी आंखें बंद होती हैं और हम तैरता हुआ महसूस करते हैं, वो और किसी में नहीं है भाई, ये जादू। हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे ऑल ऑफ अ सडन हमारी जिंदगी में एक ट्रांजिशन हो गया है, एंड वी टर्न इनटू द टैल्कम पाउडर के एड का एक किरदार। आप बताओ, आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि टैल्कम पाउडर की खुशबू आए नहीं कि दिल का कोई ऐसा तार छिड़ जाता है कि हम भूल जाते हैं हम कहाँ हैं, बस टैल्कम पाउडर की खुशबू ही हमें सुकून दे रही होती है। कुछ तो बात है यार टैल्कम पाउडर की खुशबू में, बचपन से लेकर आज तक भी ना ये जादू इसी तरीके से काम कर रहा है। मेरी कजिन है, वो बहुत टैल्कम पाउडर लगाया करती थी, लेकिन शी ऑलवेज यूज्ड टू स्मेल सो प्लेजेंट कि उनके पास बैठना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उन्हें लगता था कि मुझे उनसे मोहब्बत है, लेकिन नहीं, मुझे एक्चुअली उनके टैल्कम पाउडर से मोहब्बत थी। आप भी बताओ ना यार, आपकी टैल्कम पाउडर की मोहब्बत किस हद तक गई हुई है? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: इफ यू रिमेम्बर तो एक फिल्म आई थी सुष्मिता सेन, सलमान खान और दिया मिर्जा की। फिल्म का नाम था तुमको ना भूल पाएंगे। बड़ी क्यूट सी फिल्म थी। हालांकि फिल्म का कॉन्सेप्ट वॉज पुनर्जन्म, जो कि वही पुराना कॉन्सेप्ट है जो सीरियल्स में और पुरानी फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है। और इस फिल्म में एक बड़ा ही खूबसूरत गाना है, उस गाने का कॉन्सेप्ट भी कहीं से उठाया गया है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और इस फिल्म में एक बड़ा ही प्यारा सा गाना था और वो गाना था ये
3: बेखुदी दीवानगी तुम्हीं से हर मेरी जाने जाना।
1: Well, the point is कि this गाना, इसकी धुन has been copied from an English song जिसका की नाम है Time After Time, which was sung by Cyndi Lauper. And the gana goes this way. And if you're wondering कि इस गाने को कंपोज किसने किया था, तो that was Sajid and Wajid. बड़े दिनों बाद कोई नई जोड़ी का नाम निकल के आया है इस कट कॉपी पेस्ट गैंग में। You know the usual names जो फ्लोट करते रहते हैं। और अगर आपके पास भी 90s या early 2000 की ऐसी कोई मूवी या फिर कोई गाना है जिसके बारे में आपको पता लगा है कि ये कहीं से कट कॉपी एंड पेस्ट है, तो DM करो on my Instagram handle which is Mirchi Sara and stay tuned to Mirchi, it's hot।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: यू नो व्हाई डिड जूही चावला एंड आमिर खान स्टॉप वर्किंग विद ईच अदर?
0: नब्बे की गप्पे.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड यू ट्यून इनटू मिर्ची. एंड वेल, एक इंटरव्यू में जूही ने ये किस्सा शेयर करते हुए बताया था कि जब वो और आमिर इश्क फिल्म में साथ काम कर रहे थे, आमिर यूज्ड टू बी अ प्रैंकस्टर और अजय देवगन के साथ मिलके ये लोग ना लोगों के साथ प्रैंक्स खेलते ही रहते थे. तो बारी आई एक दिन जूही चावला की जब उनके साथ इन लोगों ने कोई प्रैक्टिकल जोक किया. And she broke into tears because of that. Had a fight with Aamir Khan and went back home. And अगले दिन she did not turn up for the shoot, जिसकी वजह से आमिर उनसे बड़ा नाराज हुए और इन दोनों ने इस किस्से के बाद 5 से 7 सालों तक बात ही नहीं की. लेकिन जब उन्हें आमिर और रीना के डाइवोर्स का पता लगा, so she rang up Aamir and asked him to meet her. एंड वेल, इससे साबित होता है कि इन दोनों दोस्तों ने बात करनी बंद की थी, लेकिन एक दूसरे की फिक्र करनी बंद नहीं करी थी. एंड दिस ऑल्सो सेज इट ऑल कि छोटी मोटी तलखियों से कुछ सालों के फासले आ सकते हैं, लेकिन अगर रिश्ते की नींव मजबूत हो ना बाबू मुशाय, तो रिश्ता लाइफ टाइम गारंटी कार्ड के साथ चलेगा. कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक विद दिस, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर स्कूल के बाहर ठेले पर मिलने वाली इमली।
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज न जाने क्यों तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हें याद है स्कूल की आखिरी घंटी बजती नहीं थी और हम पहले से ही बस्ते की जगह जेब टटोलना शुरू कर देते थे, सिर्फ 2 रुपए के लिए। वही 2 रुपए जो मम्मा टिफिन के लिए दिया करती थी, लेकिन मन तो तुम्हारी तरफ ही खिंचा चला जाता था। तुम कोई आम इमली तो नहीं थी ना, तुम तो वो ठेले वाली इमली थी जो न्यूज़पेपर या मैगजीन के पेपर के ऊपर बिछा कर दी जाती थी। ऊपर से लाल मिर्ची और काला नमक का जादू बिखेर दिया करते थे भैया उस पर छिड़क कर। कभी कभी लगता था कि वो मसाला नहीं, हमारे बचपन की शरारतों का कोई राज है। तुम्हारे ठेले पर ना भीड़ लगी रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरी क्लास ही वहाँ इकट्ठा हो गई हो। लड़कियाँ बड़ी नाप तोल कर कहती थी कि भैया थोड़ी और इमली देना ना, मसाला थोड़ा ज्यादा कर दो ना। और ठेले वाले भैया जो रोज एक ही तरह के कपड़े में नजर आया करते थे, वो कभी मुस्कुराते कभी टेंशन में होते और जल्दी जल्दी काम करते हुए सबको फटाफट फ्री करने की कोशिश कर रहे होते थे। कभी सोचा ही नहीं था यार कि जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा जब इमली से ज्यादा कीमती चीजें मिलेंगी, पर तुम जैसी सादगी फिर नहीं मिलेगी। आज जब बड़ी बड़ी दुकानों पर सब कुछ पैकेट में मिलता है ना, साफ सुथरा ब्रांडेड, लेकिन बेमजा। तो तुम्हारी वो अखबारी खुशबू, वो मसालेदार स्वाद और वो हाथ से इमली का मजा चखते हुए और चाटते हुए जो हम हरकतें किया करते थे ना, वो सब याद आता है। शहर तो बहुत बदल गए हैं, पर तुम आज भी वही हो, किसी पुरानी स्कूली बच्चे की याद में, किसी भूले हुए ख्वाब में या फिर किसी आरजे की कहानी में। तुम्हारी वो खट्टी मीठी दोस्त जो अब बड़ी हो गई है, लेकिन दिल आज भी स्कूल की आखिरी घंटी के इंतजार में बैठा रहता है। तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: सारा जमाना सारा का दीवाना
1: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: उदित नारायण अलका याग्निक जी की आवाज में राजा फिल्म से दिस गाना इस कैसेट के साइड बी का पांचवा गाना।
3: मिर्ची 90s कैसेट।
2: डम डम डरी रम डम डरी रम डम डरी रम। ये म्यूजिक यार ये दिमाग से जाता ही नहीं है। इट्स सच अ वंडरफुल अपबीट म्यूजिक। और इस गाने की पिक्चराइजेशन में ना मुझे सबसे ज्यादा पता है क्या पसंद आया था? माधुरी दीक्षित ने वो जो व्हाइट कुर्ता नहीं पहना हुआ था वो मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना माधुरी के ऊपर। इनफैक्ट ये जो मैंने बचपन में पहली बार माधुरी दीक्षित को कुर्ते में देखा, बंदे का कुर्ता है ऑफ कोर्स, वो बंदियों वाला कुर्ता है भी नहीं, ये देखने के बाद आई फेल्ट लाइक यार ये तो मुझे भी चाहिए। एंड वहीं से इंस्पायर होके आई आल्सो हैव अ मर्दों वाला व्हाइट कुर्ता। अच्छा लगता है यार घर में कभी कभी पहनने में। एंड सच बात तो ये भी है कि कंफर्टेबल भी बहुत होता है। वेल कमिंग बैक टू दिस सॉन्ग, एक्चुअली इस गाने की पिक्चराइजेशन की एक बड़ी ही खूबसूरत बात है कि एक तरफ तो ये दिखाते हैं कि दो जवान दिलों की धड़कने मिल रही है और बाकी जो पब्लिक है दे आर ऑल ओल्डी। मगर वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, और इस गाने में जो ओल्डीज के एक्सप्रेशंस है ना वो मुझे संजय कपूर के एक्सप्रेशन से भी ज्यादा अच्छे लगे यार। क्या पार्टिसिपेशन है यार वो पूरी की पूरी गैंग का। और ये गाना ना हम यहाँ तक ही गा पाते थे कि जादू कोई छाने लगा मुझको मजा आने लगा, बस में नहीं है अरमा मुझे सीने से लगा। इसके आगे हम किसमी आगे गा ही नहीं पाते थे, शर्म जो आती थी ना एज अ किड। हमारे लिए किस वर्ड का इस्तेमाल करना आसान नहीं था यार, हम उस जेनरेशन को बिलोंग करते हैं। चलो जी नाउ विद दिस कमिंग अप दिस ट्रैक आपके लिए। और जाते जाते अब आपसे कह देती हूँ कि हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यूके बड़ा कोरी भाई, बजा

मिर्ची, मिर्ची, इट्स हॉट।

बस तेरा चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तू घंटे न गिन, मैं हूँ यही एक्स्ट्रा सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट, हाथ मेरा थाम, लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग, यू लाइक माय स्टाइल, दे

Mirchi. It's hot.

0: No, I'm not defending anybody.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: No, I'm not defending anybody.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: In the episode. क्योंकि कहीं ना कहीं जिन कहानियों के बीच हम बड़े हुए हैं ना, वो भी ऐसे बिहेवियर का रीजन है. देखो, अगर फिल्मों की बात करें तो उसमें भी आज तक हमने होमोफोबिक ट्रोप्स देखे हैं, लिमिटिंग देयर आइडेंटिटी टू पंच लाइंस, कैरिकेचर्स, या फिर उनके पूरे पर्सनालिटी को ही एग्जैजरेट करके स्टीरियोटिपिकल बना दिया जाता है. सो या, जिस तरीके का बिहेवियर लैला का नजर आया है, इट इज द रीजन ऑफ इयर्स ऑफ कंडीशनिंग, जहां LGBTQIA+ कम्युनिटी को एक डिस्टॉर्टेड लेंस से दिखाया गया है. बट कहीं ना कहीं मेरे और आपके जैसे लोगों को इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे इस कम्युनिटी के बारे में पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करना इज डेफिनेटली द नीड ऑफ द आवर. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: Energy. It's hot.
1: तेरी मम्मी की जय

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. Yeah. You already know what it is.

0: सारा मेरा। Oops.
1: यार, you can't take pride in your son's bad behavior, हाँ?
2: श्रुति, श्रुति, श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप और इमेजिन, क्या आपकी मम्मी या आपके पापा आपके किसी बुरे बर्ताव को लेकर किसी पॉडकास्ट पे आपकी तारीफ के पुल बांधना चाहेंगे? नहीं ना। सो बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट इज कि दिया मिर्जा रिसेंटली सोहा अली खान के पॉडकास्ट पे गई और उन्होंने अपने बेटे को लेकर एक इंसिडेंट शेयर किया जहां उनके बेटे ने नारियल पानी वाले डिलीवरी एजेंट को सुना दिया था। सो द थिंग वाज कि वो जो नारियल पानी वाला है वो नारियल पानी लेकर आया उनके घर पे, बट गलती ये कर दी कि वो नारियल पानी प्लास्टिक बैग में लेकर आया था विद अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एज वेल, जिसपे उनके बेटे ने ना आओ देखा ना ताओ बस डिलीवरी एजेंट को खरी खोटी सुना दी कि आप हमारे घर पे कैसे लेके आ सकते हैं प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड प्लास्टिक बैग, आपको नहीं पता है कि ये एनवायरमेंट के लिए कितना बुरा है एंड ऑल दैट जैज। चलो ठीक है, एट वन पॉइंट आई अंडरस्टैंड कि वो सही बात समझाने की कोशिश कर रहा था एंड आई अग्री दैट ही इज अ किड, इसलिए उसको शायद पता नहीं होगा कि किस तरीके से अपनी बात रखनी है। बट एज अ समझदार पेरेंट, दिया मिर्जा को अपने बच्चे की इस हरकत को कॉल आउट करना चाहिए था रादर देन बोस्टिंग अबाउट इट इन द नेम ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर। एंड दैट इज द रीजन माई फ्रेंड, दिया मिर्जा फिलहाल इंटरनेट पे ट्रोल की जा रही है विद द हैशटैग एंटाइटल्ड एरोगेंस। बाकी आपकी इस पूरी चीज पे क्या राय है वो मुझे जरूर बताइएगा मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।